जो भी वेखे खिड़ खिड़ जावे, भुल जावे ओ अपना दुखड़ा। कोमल मन ते शुद्ध हिरदे विच रब्बी रंग दहसदा मुखड़ा। जो भी वेखे खिड़ खिड़ जावे, भुल जावे ओ अपना दुखड़ा। जात

0: ਜੀਣਾ ਕੀਤਾ ਬੇਹਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਹਜੇ ਦਾਸ ਤਾਂ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਨਰਜੀਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਗਣ ਲਈ, ਬੇਕਸਮ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਣ ਲਈ ਫਿਰ ਖੰਭ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਲੱਭੋ ਉਪਾਅ, ਰੋਕੀਏ ਹਿੰਮਤਾਂ ਦਾ ਡੱਕਾ ਲਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
1: ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ। ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮੇਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ।
2: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दुआबा रेडियो के कवि दरबार में मैं रमणीक शर्मा अम्बाला शहर से कविता प्रस्तुति के लिए उपस्थित हूँ। दुआबा रेडियो की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे कविता प्रस्तुति का सुअवसर प्रदान किया। माननीय हरबंस सिंह जी को अनेकानेक शुभकामनाएं व धन्यवाद। आसपास घटित होती घटनाओं से मन आहत होता है, लेखनी उठती है तो मन का सारा दर्द कागज पर उंडेल देती है। ऐसे ही भावों को लेकर प्रस्तुत है मेरी कविता माँ की वेदना। तो मेरी कविता आपके सामने, कविता का शीर्षक माँ की वेदना। दर्द में छटपटाहट और आक्रोश से भरा ये मन, आखिर नारी होना जो कभी मेरा अभिमान रहा था, सामाजिक विषमताओं को सह जाने की क्या मजबूरी है जिसको सहन करता है, जिसके चलते कामी लोभी लंपट समाज में गाल बजाते फिरते हैं। आखिर कब तक चलेगा ये सब। छान मारे पुरातन ग्रंथ, खूब ढूंढे सब प्रश्नों के उत्तर, पर पाया क्या। तब तो मैत्रेयी गार्गी अनेकों नारियों को थी सम्मानित व बराबरी का दर्जा हासिल। समय की धूल पड़ते पड़ते कहां गई वह बराबरी, कहां गया वह सम्मान, कहां गई वह इज्जत, गरिमा मान सम्मान। कब पूज्या से भोग्या बन गई पता ही नहीं चला, और अब फैशन की गुड़िया बनाकर रख दिया, ऐसा चरित्र बनाकर परोसा बाजार की आधुनिकता में इन विज्ञापनों फिल्मी पत्रिकाओं ने, कितना दिखाऊ और बदन उघाड़ू हो सके उतना बना दिया जाए। छी, घिन आती है ऐसी कुत्सित सोच से भी। संस्कृति मान मर्यादा तो कब के पीछे छूट गए इस आधुनिकता के बाजार में। सोच से परे हो गया कि उत्थान है या पतन। समानता का जामा पहनाकर शोषण, दोहरा चरित्र है समाज का। बेटियों को जलील होते उनकी अस्मिता पर घात होते देख मन नहीं तड़प जाता तुम्हारा। मां हूं, सोचती हूं कहां छुपा लूं इन नन्ही बेटियों को कि इन दरिंदों कामी लोभी लंपटों की बुरी नजर ना पड़े। मन भर आया, खूब सोचा और देखो शाम तुम याद आए, शाम तुम याद आए। तुम ही करो कुछ कान्हा, सब कुछ वैसा दिखे जैसा पुरातन काल में था, और देखो सुझाया रास्ता उसी परम पिता ने और कहा, तेरे सामने छोड़े सभी विकल्प मेरी बच्ची। मैं चुप, पहेलियां मत बुझाएं सर्वशक्तिमान, मैं परेशान हूं। वो बोले, क्या नहीं दिया मैंने तुम सबको, तुम सब नारियों को, मेधा दी, शक्ति दी, भक्ति दी, बल दिया, विद्या दी, तुम बनो ऐसी कि बुद्धि से पछाड़ दो सबको। तुम बनो ऐसी पहलवान कि देकर धोबी पछाड़, कर दो चारों खाने चित पशुत्व के गुणों वाले नराधमों को। बुद्धि पर पड़े पर्दे छटने लगे। हाँ, शक्ति है हम में, रण हो तो रणचंडी बनकर, गृह हो तो गृह स्वामिनी बनकर, अरे देखो स्वामिनी हूं मैं, स्वामिनी है हम। अपने कर्म के मार्ग को थोड़ा और प्रशस्त करती हूं, अपना सोया ज्ञान शक्ति पहचान कर पूरी शक्ति से जुट जाती हूँ प्राप्य को समेटने में। हाँ, मैं ध्वस्त आत्मविश्वास को पुनः जगाकर समाज को, उनकी ललनाओं को, नाइंसाफियों का डटकर सामना करना, कुसंस्कारों से लड़ना, पूरी शक्ति से जूझना और बुराई पर ना झुकना, कलम पकड़ना, कलम पकड़ने के साथ साथ मजबूती से कलाई को कठोर बनाना सब सिखाऊंगी। निर्बलता छोड़ो मेरी बच्चियों, निर्बलता छोड़ो। नारी हूं, मां हूं ना, दो नहीं चार चार हाथों से आत्मसम्मान व अस्मिता को संभालना सिखाऊंगी। पर फिर भी दर्द से तड़पती हूं, फरेबी नरपिशाचों दुशासनों के अन्याय और घृणित कुकृत्यों पर मैं रुकूंगी नहीं। सब सब सब सिखाऊंगी मैं कि दुर्गा बनकर कैसे अपनी रक्षा की जाती है, अन्नपूर्णा बनकर कैसे भंडारी बना जाता है, कल्पना चावला बनकर कैसे पंख फैलाया जाता है और असीमित अंतरिक्ष को नापा जाता है। सब सब सब कुछ सिखाऊंगी मैं अपनी बच्चियों को, सब कुछ सिखाऊंगी मैं अपनी बच्चियों को।
1: अम्बाला तो बाद हूँ असि थानू फिरोजपुर लेके चलते हैं। फिरोजपुर के साडे शायर रहिंदे ने कमलदास जी। कमलदास जी बड़ी धीमी सुर दे विच रह के अपनी रचना पेश करते ने, स्रोते उन्होंने प्यार भी देंदे ने, ते इस बार फिर वो साडे सदे दे उत्ते हाजिर हो रहे ने। आस करते हैं पहला वाग ही उन्होंने स्रोते साडे प्यार देंगे। कमलदास शर्मा जी, थोड़ा दुआबा रेडियो दे मंच ते निघा स्वागत है जी।
3: लिखे है मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे, लिखे है मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे।

महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे हैं मन ने। पहाड़ों से निकल कर जल नदी कहती मेरे संग चल,

बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं लिखे जो मन ने। ये हरियाली भरी वादी ये फूलों से लद

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी, एहसास

दुख सह लियो सिदक ना हारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं चारे पुत क्यों वारे जग विचारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं चारे पुत क्यों वारे जग